आईया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्द ता गाव हो हरि केरा मन जिनि वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हूं करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब केश है जिस देह सो पावे सदा सिबत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही कार तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाईया कार सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु बेटा हो जिस दी आए वडे आईया कह नानक सुनहु संत हो सब तर हो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया तुहर कर्म पाया तुद जिन काउ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होवा तित कर अनहद वाजे अनद सुनहु वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बिसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पंडित कहते पवित सतगुर रहिया पार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे

0: छोटे भरा तो गुर तग दी खो लवांगा।
1: दर ब्रिंद खर्चन कर लै हां,
0: बड़ा पैसा खर्चांगा मैं इस कार्ज लई।
1: सब की करी उल्ट अब दै हां,
0: कह लगे तुहाडा ते मेरे पिता जी दा कीता काम मैं सारा उल्ट कर देंगा। भाव के तुसा ने मेरे छोटे भरा नूं गुरता गद्दी दे दित्ती भावे, पर मैं अपने जतना नाल सारा कुछ उल्ट कर देंगा।
1: बिरद कहो रिस क्यों उर करे।
0: बाबा जी कहन लगे के बाबा पृथ्वी चंद जी क्यों

कहन की छोड़ बाण, तुझ तुरत सिडाओ मेरो कहे मान। मोको कहा सतावह बार बार, प्रव जाल थल गिर किए पहार। एक राम।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद कात जाइए रे कर लागो रंग मेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाओ एक दिवस मन पई उमंग कस चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे जहा जाइए तह जल पखान तू पूर रहयो है सब समान वेद पुराण सब देखे जोए ऊहा तो जाइए जो ईहा ना होए सतगुर मैं बलिहारी तोर जिन सकल बिकल ब्रह्म काटे मोर रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुर का शब्द काटे कोट करम बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद साहेब संकट वै सेवक भजै

0: तू मोको पार उतारे केसवा, नामा कह हो तर भी ना जानो, मोको बाह देह बीठला, सहज अव्वल धूड़ मणि गाडी चालती, पीछे तिनका लै कर हाँकती, जैसे पनकत थ्रू टिट हाँकती, सार धोवन चाली लाडली रहाओ।
1: साध संगत जी, जैसे पनकत थ्रू टिट हाँकती, इस तरह थ्रू पाठ जिहड़ा अड है, टिट पाठ अड है, इसे तरह ही उचारण करना। एक माफ करना पिछलियां पंक्तियां, दूसरे पदे ते आप जी नूं बेनती करूंगा। रहाओ तो बाद भाई साहब दोहरे पढ़ दिओ, रहाओ तो पाठ बाद विच। अनिल बेड़ा।
0: जैसे अपने तन है प्राणी मरण मांडे, तैसे संत जना राम नाम ना छाड़े, गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा, लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला रहाओ, अनिल बेड़ा हाओ खेव ना साको, तेरा पार ना पाया बीठला, हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा।
1: हां जी, मोको पार उतारे केसवा, कौ दे अगे मेरे कोल दो डंडियां वाधू लगियां, जे किसे दे लगियां होण ते ओ कट देणियां, ओ नहीं हैन, ओ गलती दे नाल लगियां होईयां, प्रिंटिंग प्रेस दी गलती है। हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा, कौ दे अगे दो डंडियां ओ भी नहीं है, अगे जानो पाठ दे अगे भी दो डंडियां ओ भी गलती नाल लगियां होईयां, ए भी डंडियां साध संगत जी, ए वैसे भी नहीं सरूपां च आउंदियां, कुछ सरूपां जे लगियां ते ओ गलती दे नाल प्रिंटिंग प्रेस दी गलती है। हां,
0: नामा कह हो तर भी ना जानो, मोको बाह देहे बीठला, सहज अव्वल धूड़ मणि गाडी चालती।
1: अव्वल पाठ करना एड़े ते अदक दा प्रभाव ला के, वावे ते अदक नहीं लाउणी, अव्वल नहीं करना, जिवे ज्ञानी जी ने उचारण कीता है, सहज अव्वल धूड़ मणि गाडी चालती,
0: पीछे तिनका लै कर हाँकती, जैसे पनकत थ्रू टिट हाँकती।
1: हां जी, इसे तरह साध संगत जी, जैसे पनकत थ्रू, चरणा दे विच रारा है, उह दुलैंकणा रारे दीआं अद्धे रारे ते जाके, ते टिट पाठ अलग बोलना, वखरे वखरे पाठ हन, हाँकती फिर हाँकती ते जाके पंक्ति संपूर्ण। हां जी,
0: सर धोवन चाली लाडली रहाओ, धोबी धोवै बिरह बिराता, हर चरण मेरा मन राता, भणत नाम देओ रम रहया, अपने भगत पर कर दया, बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तुझे सुझंता कछु।

जैसे कुरंक नहीं पायो तेद, तन सुगंध ढूढ़े प्रदेश, आप तान का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर, पुत्र कलत्र का करे अहंकार, ठाकुर लेखा मगनहार, फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किस है पुकार है पियो पियो, साधु की जौ लेहे ओट, तेरे मिटह पाप सब कोट कोट, कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम, बसंत कबीर जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुरह की जैसी तेरी चाल, तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल, इस कर्म है सो तू ढूंढ खाए और

हाओ पूर्ण परम ज्योत परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारे मोहन मोहे लिया मन मेरा समझस शब्द विचारे मन मुख हीन होछी मत झूठी मन तन पीर शरीरे जबकि राम रंगीले राती राम जपत मन धीरे हौ मैं छोड़ पई बैरागन तब साची सुरत समानी अकुल निरंजन स्यों मन मान्या बिसरी लाज लोकानी पूर भविख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण आधारा हर कै नाम रत्ती सोहागन नानक राम पतारा सारग महला पहला हार बिन क्यों रही है दुख व्यापै जिहबा साधना फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संतापै रहाओ जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी दर्शन देखत ही मन मान्या जल रस कमल बेगासी ऊनव कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै तरवर बिरख बिहंगम बिहंग कोयंगम घर पिर तन सोहागै कुचिल कुरूप कुनार कुलखनी पिरका सहज ना जान्या हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समान्या आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे नानक प्रभ ते सहज सुहेली।

0: हां जी साध संगत जी, सारंग सस्से दा कन्ना ला के ते इथे टिप्पी दे सहत पाठ है। सारग पाठ पिछे जिवें आया, इथे सारंग पाठ आया। सस्से दा कन्ना, रारे दी टिप्पी ते गग्गा सारंग, महला चौथा घर पहला।
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के संत जना की हम तूर, मिल सत संगत।

तिहत गृह वाजे पंच सबद वडभाग मथोरा तिन जन के सब पाप गए सब दोख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तिन जन के हार मार कढे पंच चोरा हर राम बोलह हर साधु हर के जन साधु जगदीश जप हो मान बचन कर्म हर हर आराधु हर के जन साधु हर राम बोल सब पाप गवादु नित नित जागरण।

राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे।

संध्या काल करह सब वरता जो सफरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निहफल सब करमान सो ज्ञानी सो बैसना पढ़िया जिस करी कृपा भगवान ओन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विश्वान क्या हम कथ है किछ काथ नहीं जान है प्रभ भावै तवै बोलान साध संगत की धूर एक मांगा।

सागल पराध एक गुण नाही, ठाकुर छोड़ दास भजहा, आई मस्त जड़वत की न्याय, जो तस्कर दर सन्नेहा, आन उपा न को सूझै, हर दासा सरणी पार रहा, कहो नानक तब ही मन छुट्टी है, जाओ सगले औगुण मेट धरहा, सारग महला पंजवा, माई धीर रही प्रिय बहुत बिरागेओ, अनक भांत आनूप रंग रे, तिन सुर चै न लागेओ रहाओ, निसबासुर प्रिय प्रिय मुख टेराओ, नींद पलक नहीं जागेओ, हार कज्जर बस्तर

निसबासुर नखियतर बिनासी राव ससियर बेनादा गिर बसुदा जाल पवन जायेगो एक साध बचन अटलादा अंड बिनासी जेर बिनासी उत्पुज सेत बिनादा चार बिनासी कटह बिनासी एक साध बचन निह चलादा राज बिनासी ताम बिनासी सात की पी बेनादा दृष्टमान है सगल बिनासी एक साध बचन आगादा आपे आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो न जाई कहीं पातरे प्रभ नानक गोर

0: जहाँ श्रवण हर कथा न सुनिए तह महापयान उदयानद, जहाँ कीर्तन साध संगत रास तह सगन बास फालानंद, बिन सिमरन कोट बरख जीव सगली औद ब्रथानंद, एक निमख गोविंद भजन कार तौ सदा सदा जीवानंद, सरन सरन सरन प्रभ पाव दीजा साध संगत कृपानंद, नानक पूर रहो सर्ब मै सगल गुणा विद जानंद, सारग महला पंजवा आप
1: हाँ जी
0: नानक पूर रहो।

0: जाकै संग पार ब्रह्म ते आईऐ उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवै हर संत सरन। आप जपै अवरह नाम जपावै वड समर्थ तारन तरन। जाको मंत्र उतारे सहसा ऊणे को सुबर भरन।
1: सुबर पाठ कठ कस के करना ते सुभर नहीं करना, सुबर भरन।
0: हरदासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन। भगत जना भगत भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन। जाको भयो कृपाल बीठुला तिन हर हर अजर जरन। हर रस अगाने सहज समाने मुख ते नाही जात बरन। गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरन। सारग महला पंजवा।
1: जिवें बरन उसे तरह ही उधरन, इथे उधरन नहीं, ऊड़े नू अगेतर ला के उधरन।

दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन न रह बहुविद उमकाई रहाओ चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैरागी कद पावो हर दर्शाई जतन करो एहो मन नहीं तीरै को है रे संत मिलाई जप तप संयम पुन सब होमो तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमख प्रिय दर्श दिखावे तिस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहो बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई मान अभिमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मिलाई प्रभ रंग दयाल मोहे गृह में पाया जन नानक तपत बुझाई सारग महल्ला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक घोर मह उर्ध तप करता निमक निमक गुण गाही रहाओ अनिक जन्म भ्रम तो ही आयो मानस जन्म दुलबाही गर्भ जोन छोट जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही कण नाही तुह गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बवरे तो काल समुखा उठ जाही सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही।

0: परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख नु दो तन दिते ने, एक अस्थूल एक सूक्ष्म। वो जो सूक्ष्म है वो मन है और जो अस्थूल है वो तन है। रोग अक्सर तन दे तल ते प्रगट होंदे ने और सोग अक्सर मन दे चोंदा है। इस तरह रोग ते सोग दे सारी जिंदगी लंघ जांदी है। सूक्ष्म शरीर सोग नाल ग्रसिया होंदा है और अस्थूल शरीर रोग नाल ग्रसिया होंदा है। सोग किस तरह दूर होवे और सोग की है। चाया सी कुछ हो गया कुछ सोग, मंगी सी कुछ और चीज मिल गई है कुछ और सोग, जाना सी किसे होर पासे पहुंच गए किसे होर टिकाने ते सोग, आवना सी किसे होर ने आ गया कोई होर सोग। मन दी ख्वाहिश तो उल्ट जो कुछ भी हो जांदा है सोग नु जन्म देंदा है। रोज रोज असी जो कुछ चाहते हां नहीं आंदा और उस तो विपरीत हो जांदा है तो मन सोग नाल भर जांदा है। हर नवा दिन नवे सोगां नु जन्म देंदा है। क्यों कि हर दिन कुछ साड़ी मंग ते होंदी है, कुछ साड़ी चाहत ते होंदी है, ते जद भी उस तो विपरीत हो जाए और बहुत वड्डे पद्धर ते हो जाए तो मन दे तल ते सोग पैदा हो जांदे ने। कबीर कहंदे ने, जो मैं चितवो ना करे क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवे हर करे जो मेरे चित ना होए। एक ते मेरी चाहत है, एक प्रभु दी चाहत है। प्रभु दी जो चाहत है उस नाल मैं राजी नहीं, मेरी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही तो सोग। ये 20वीं सदी रोगां नाल ते भरी है पर मानसिक सोग नाल भी भर गई। अजो के विज्ञानक मनोचिंतक इसका इलाज लभदे ने वक्ती मनोरंजन। मनोरंजन मन सोग दे चे तो कोई मनोरंजन, कोई खेल, कोई तमाशा, कोई रंग, कोई रूप, इनू वेखो, उस दे च बैठो, खेलो ताकि सोग मिट जाए। पर कौन इना सियाणियां नू दसे सोग मिटदा नहीं, वक्ती तौर ते सोग भुलदा है। और जैसे जैसे उम्र वधदी है सोग भी वधदा है। सोग देच होके होंदे ने, सोग देच पछतावे होंदे ने, सोग देच साड़े होंदे ने, सोग देच जलन होंदी है। सोग एक ऐसी अग्नि है जिस देच मनुख दी सोचन शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दी विचार शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दा सदाचार भी कई दफा जल के खाक हो जांदा है। सोग एक ऐसा मानसिक रोग है। तन देच रोग होवन, मन देच सोग होवन तो ऐसे पुरुष नो किसे होर नरक देच जान दी लोड़ नहीं, नरक भोग रहे है, ये नरक देच जी रहे है। नरकी क्यों, इंज कहिए कुंभी नरक देच जी रहे है। तन देच रोग ने, मन देच सोग ने, जिधर जा रहे है रोग ते सोग इस दे नाल जा रहे ने, इदे नाल बैठे ने, बिल्कुल कोल ने। अज तक मानसिक सोग नो दूर करन वास्ते जितने मनोरंजन आए ने और रोज नित नवे पैदा हो रहे ने, सोग नो मिटाण विच असमर्थ हो रहे ने, क्योंकि कोई भी मनोरंजन बहुत लंबे समय तक टिकदा नहीं, पुराना हो जांदा है। हर तरह दा मनोरंजन, चाहे कोई रूप है, चाहे कोई रंग है, चाहे कोई तमाशा है, चाहे कोई खेल है, चाहे कोई गीत है, चाहे कोई संगीत दी धुन है, मन ऐसा है सबनों पुराना कर देंदा है। क्यों, मन चंचल है। चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे चल रहे चल रहे, तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया। चाहे रंग है, चाहे रूप है, तमाशा है, खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है मन चंचल लंगे अग्गे। तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है, और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नू सोग कहंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदत भी महसूस करेगा, मेरा आनंद उड़ गया, खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने, हसदी हुई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग देच किस तरह ग्रस्त हो जांदा है, किस तरह फस जांदा है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देंदा है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़दा, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनदा, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है, सोगी मनुख तनहाई बैठना चाहता है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देंदा है, और सोग मन नू इतना सुकोड़ के रख देंदा है कि हुण संकुचित रहना चाहता है, किधरे एकांत तनहाई दे च बैठना चाहता है। सोग इस नू महफलां दे च नहीं बैठन देंदा, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग संकोच के रख देंदा है, सोग सिकोड़ के रख देंदा है, सोग निचोड़ के रख देंदा है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग दे च ही जीना चाहता है, और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नू जन्म देंदा है, कितने तरह की मानसिक बीमारियां नू जन्म देंदा है। इत्थे तक कौन पहुंचांदा है? इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने, क्यों पहुंचांदियां ने? पूरियां नहीं आउंदियां। इस नूं इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्तरी इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा त्रंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है मन दे तलते। क्यों? ख्वाहिश है, आसावां इसके अंदर चल रही ने, किसी किसी इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं तो इच्छावां चलदियां रहिंदियां ने, उन्हां नाल संकल्प नहीं चलते। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इसकी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ये इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ये इस तरह है, दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर दा हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया चों, ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी तो वग रहा है। इच्छा ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਛੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇੰਜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ, ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੋ ਪੀ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਬਾਕੀ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਤਾ ਅੰਦਰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਨਾਮ ਸਰੀ ਮਨੋਰਾਜ ਨੀਰ ਭਰੀ। ਇਸ ਆਸਾ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੰਕਲਪ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਨਾਮ ਸਰੀ ਮਨੋਰਾਜ ਨੀਰ ਭਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਰੰਗ ਖਰੀ। ਇਸ ਆਸਾ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੰਕਲਪ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੰਗ ਕੀ ਨੇ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਕੁਲੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਦੀ ਗਹਿਰੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਟ ਕਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੌੜੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਯੋਗੀ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਤ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹਾਯੋਗੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਪਤੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਪ ਲਈਏ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤਰੰਗ ਨੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ, ਇਹ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਨੇ। ਸੰਕਲਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਸਾ ਨਾਮ ਸਰੀ ਮਨੋਰਾਜ ਨੀਰ ਭਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਰੰਗ ਖਰੀ ਵਿਆਕੁਲੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਲਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਲਈਏ 100 ਸਾਲ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਨਦੀ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਪੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪਾਟ ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੰਬਾਈ ਨਾਪ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੌੜਾਈ ਨਾਪ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਪ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਸਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ ਮਨਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸੋਗ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਇਤਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਮੂੜਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी। पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लब ले किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां हुईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां हुईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने, इस कच्ची जमीन देच पक्के महल किस दे बने ने, इस कच्ची धरती देच पक्की जिंदगी किसनु मिली है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में, लेकिन फिर भी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: अष्टपदी
1: जिसके अंतरराज अभिमान
0: सो नरकपाती होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत पिष्टा का जंत
1: पाप को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन ओम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नानकी है मुक्तिया गैस पावे
1: धनवंता हुए कर गरबावे
0: तृण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: में हुए जाए पसमंत
1: सेना बदय आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जहाँ का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरम पावे सकले ब्रथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर्प की रेन जहाँ का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझ ते कश होए
0: तब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: तब कृपा से बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो छुटे
1: सहस कटे लग कोट तावे
0: कितना आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विद्या के करे
0: नैतिक तावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ फिर थे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुखो हे
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहाँ विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप आप्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: सब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजे देख करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसै आवे न जाए
0: नानक सभी रह समाए
1: आप उपदेशै समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप तीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते भिन्न कहो किश होए
0: आंत नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदय के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुनी सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आरजा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे ना कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भीतरे
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यों लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा नह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी गत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खिन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज तेहीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान परमाइये
0: संत का दुखी उजड़ पाइये
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रख नहार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउं बिललाए
0: जो जल बे हून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो गुआर तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दिक्का तो रही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्ट है कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिस को नमस्कार
1: रबी उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्यावो सास गिरा
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वड पागी नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपद ਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਜੇਵਨ ਪਾਉ ਇਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕਹਿ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਪਾਉ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਪੇਖਾ ਪੁਰਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਹਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ਼ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਪਣ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਬਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲੱਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ
1: ਜਪ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ

0: देवनहार
1: अवर त्याग तूत सहचतार
0: जो कश करे सोई सुख मान
1: ला काहे प्रे अजान
0: कौन बस आई तेरे संग
1: लपट रहे हो रस लोभी पतंग
0: राम नाम जब हृदय माही
1: नानक पद से थी कर जाहे
0: जिस वक्र को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया
0: आज मान ले हो मन मोल
1: राम नाम हृदय में तो
0: लाद खेप संत संग चाल
1: अवर त्याग बिखिया जंजाल
0: धन धन कह सब कोई
1: मुखो जलहर दरगह सोए
0: यहो व्यापार बिरला व्यापार है
1: नानक ताकै सतबर हार
0: चरण साध के धोई धोई पियो
1: हर प्रसाद को अपना जियो
0: साध की धूर करो इशनान
1: साध ऊपर जाइए कुर्बान
0: साध सेवा वट भागी पाई है
1: साध संग हर कीर्तन गाई है
0: अंत बेगन ते साधु राख है
1: हर गुण गाय अमर तरस चख है
0: ओट गई संत हंदर आया
1: सर्व सुख नानक ते पाया
0: मृतक को जी वालन हार
1: भूखे पौ देव ते आधार
0: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
1: गुरब लिखे का लहना पाए
0: सब किस तिसका करना जोग
1: जिस बिन दूसर हवा न होग
0: जप जन सदा सदा दिन रैणी
1: सब ते उज निर्मल ए करनी
0: कर कृपा जिसको नाम दिया
1: नानक सोजन निर्मल थिया
0: जाके मन को की प्रतीत
1: जन आवे हर प्रभ चीत
0: भगत भगत सुनिया तिह लोए
1: जाके हृदय एको होए
0: सच करनी सकता की रहत
1: सच हृदय सतमुख कहत
0: साची दृष्ट साचा आकार
1: सच वर तैसा चापा सार
0: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
1: नानक सो जन सच समाता श्लोक
0: रूप नरेख नरंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न
1: सब बुझाए नानका जिस हो सो परसन अष्टपदी
0: अवनासी ब्रह्म मन मह राख
1: मानु की तू प्रीत त्याग
0: इससे परे नाही किछ होए
1: सब निरंतर एको सोए
0: आपे बिना आपे दाना
1: गैर गंभीर गहीर सुजाना
0: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
1: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
0: साथ तेरे की चरनी पाऊं
1: नानक कै मन हे नराव
0: मनसा पूर्ण सरनां जोग
1: कर पाया सोई हो
0: हरन भरन जाका नेत्र फोर
1: इसका मंत्र न जाने होर
0: अंध रूप मंगल सद जाके
1: सर्व थोक सुनिए करता कै
0: राज महराज जोग मह जोगी
1: अपमत पीसर कृष्ण मह भोगी
0: त्याई त्याई भक्तां सुख पाया
1: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
0: जाकी लीला कीमत नाहे
1: सगल देव हारे अवगाहे
0: पिता का जन्म के जाने पूत
1: सगल परोही अपने सूत
0: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
1: जनदास नाम ते आवे से
0: देह गुण में जाको परमाए
1: जन्म रेफरे आवे जाए
0: ऊंच नीच तिसके स्थान
1: जैसा जनावे तैसा नानक जान
0: नाना रूप नाना जाके रंग
1: नाना पेख करे एक रंग
0: नाना विद किनो विस्तार
1: रब अविनाशी एक अंकार
0: नाना चलित करे तिन माहे
1: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
0: नाना भेद कर बंत बनाई
1: अपनी कीमत आपे पाई
0: सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ
1: जब जब जीवे नानक हर नाम
0: नाम के धारे सगले जंत
1: नाम के धारे खंड ब्रह्मंड
0: नाम के धारे सिमरत वेद पुराण
1: नाम के धारे सुन ज्ञान ध्यान
0: नाम के धारे आकाश पाताल
1: नाम के धारे सगले आकार
0: नाम के धारे पुरिया सब भवन
1: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान
1: सत के बल प्रधान
0: करतूत सत सत जाकी वाणी
1: सत पुरुष सब माहे समानी
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत्त
0: सत करणी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे सब भली
0: सत नाम प्रकाश खुदाई
1: विश्वास सत नाम गुरते पाई
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत ते जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत नित बुझे जे कोई
1: नाम जबरता की गत होए
0: आप सत की आ सब सत
1: आपे जाने अपने मत गत
0: जिसकी सिरत सो करना हार
1: अवर न बूझ करत विचार
0: करते की मित न जाने किया
1: नानक ज्योत स्वभाव है सो वर्तिया
0: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद
1: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद
0: सबके रंग राज जन रहे
1: गुरके वचन पदार्थ लहे
0: कोई दाते दुख काटन हार
1: जाके संगत रह संसार
0: जन का सेवक सो वट भागी
1: जन के संग एक लिव लागी
0: गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे
1: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
0: आद सच जुगाद सच
1: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
0: चरण सत सत प्रसन्न हार
1: पूजा सत सत सेवदार
0: दर्शन सत सत एकनहार
1: नाम सत सत ध्यान हार
0: आप सत सत सत धारी
1: आपे गुणकारी
0: शब्द सत सत प्रभक्ता
1: सुरत सत सत जस सुनता
0: भुजन हार को सत सब होए
1: नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
1: नानक रावण तिन मूल पछाने
0: जाकर हृदय विश्वास प्रभाया
1: तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
0: भय ते निरपो होए बसाना
1: जिस दे उपजा तिस माहे समाना
0: बस माही ले बस कटाई
1: काको पिंड न कहना जाई
0: बूझे बूझ नहार
1: नारायण मिले नानक एक
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
1: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
1: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
0: ठाकुर को सेवक जाने संग
1: का सेवक नाम कै रंग
0: सेवक को प्रभु पालन हारा
1: सेवक की रखे निरंकारा
0: सो सेवक जिस दया प्रभु धारै
1: नानक सो सेवक साथ साथ समार
0: अपने जन का पर्दा ढाकै
1: अपने सेवक की सर पर रख
0: अपने दास को दे वडाई
1: अपने सेवक को नाम जपा
0: अपने सेवक की आप पत रख है
1: ताकि कदमित कोई न लख है
0: रब के सेवक को न पहुँचे
1: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
0: नीति कीरी मह कर रख है
1: भस्म कर एलस कर को टोट लाग
0: जिसका सास

अपरेत देवे सो धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो सह सहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा से दधा बोध दृद करता अध उर्द अर्दंग अगंग ओग हरता परम

अगाध अबाध आनंदी स्वरूप नमो सर्माने समस्ति निधाने नमस्तवंग नरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे।

चक्र दान चत्र चक्र जान चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र परथी से आदि से अदृश्य अकृश्य

दूत वर्ण के विभूत करण के राजंग प्रभाह के धर्मंग तुजह के अशोक वर्ण के सर्वा भरण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है।

गनी मैं रजाय कर ही मैं समस्त लो जोबा है के साहेब करा है के नरकं प्रणास है बेहस्तलो नवास है के सर्बल गवान है मेसलो रवान है तमाम तमीज है समस्तल अजीज है परं परम ईस है समस्तल अदीस है देशोल लेख है मेसोल पेख है जिमिनोल जम है मिकोल एमा है करिमोल कमाल है जरत जमाल है चलंग प्रकाश है मित्तो सुबास है के अजब स्वरूप है।

सर्व कृत कर्ता कर अर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म आत्म वास है जा सके जास है पुजंग प्रयात छांद नमो सूरज सूरज नमो चंद्र।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणाशे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणाशी स्वतर्मंग बेपूते सदा सचदा नाद सतरंग प्रणाशी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजाय बेपूते गजाय बगनी में हरियंग करियंग करिमल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते।

वारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूप तंत को नांग ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दसान को बाजत टोहल मृदंग नगारे गुंजत गूड गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेख भवान के भूपत कौन गना नहीं जात बिचारे सिरपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम।

संगरो दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेच करावरण काता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हुआ मरे पुरख जावन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे।

पौड़ी सेव की दिशन तो खीज ने सचो सत्य आया ओनी मंदे पैर न रखियो कर सोकरी तनम कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला ने देवे।

दर्शन प्यासी दिन सुरात चितवन दिन नीत खोल कपट गौर मेलिया नानक हर संग मीत दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन करम होए प्रभ मेरा जब लो नहीं भाग लिलार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो कल

कीरत की। गुर राम दास राखो सरनाई, सुकहो टल गुर सेवीऐ एहन सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसामंदी, नूर अरसों पुरसों चटिया। सोद डिठे सच्चे पातशाह,

मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अंदर जद मनुख सब कह देता है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और इस अवस्था ते पहुंच जाता है, सब कुछ हो जाता है, बूंद सागर हो जाती, परमात्मा वर्गा हो जाता है। अंदर दी यात्रा विनम्रता दी यात्रा है, ना कुछ होने दी यात्रा है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। बड़ा सुंदर इस देते एक आलम ने अपना ख्याल दिता है, अज राह चुनार के सलामत न कुनत, समाप्ति करिए, रस्ते दिच इस ढंग नाल चल कि तेरे चलन नाल किसे दा रस्ता ना रुके, तू किसे दे रस्ते दा रोड़ा ना बने, तू किसे दे रस्ते दा कंडा ना बने, तू किसे चल दे मनुख दे पैरां नू रोके ना, अज राह चुनार के सलामत न कुनद। कई मनुख मनुख नहीं आंदे, रोड़े आंदे ने, कंडे आंदे ने, उन्हां दी कोशिश आंदी है रोकिए, ये पछड़िया ही रहे। अज राह चुनार के सलामत न कुनद, बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच मखलूक देच इस ढंग नाल रहे कि तेरे रहन नाल कयामत ना होवे। कई बंदे बंदे नहीं आते, बस चिंगारियां ही आते ने, जिथे बैठे कोई ना कोई पांबड़ ते बालन गए, कोई ना कोई अग ते लाण गए, कुछ ना कुछ ते चिंगारी छोड़न गए। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, दर मस्जिद गर रवे के चुना जाओ के तोरा, दर पेश न खानद ओ इमामद न कुनद। कदी तेरा ख्याल आवे ना कि मैं मस्जिद दे जाना है ते नमाज पढ़नी है, अगे अगे होके नमाज ना पढ़ी, मतां तेरे अगर ख्याल पैदा हो जाए मैं इमाम हां और मैं खुदा दे घर दे च भी नंबर वन ना, मेरा पहला नंबर, बाकी सब पछड़े हुए, बाकी की नहीं, कुछ भी नहीं। इस घर दे जो कुछ ना कुछ हो जाता है वह सब कुछ हो जाता है, और जो सब कुछ होने की कोशिश करता है कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक हकीकत है, एक बहुत सच्चाई है, सब कुछ होने दे च, सब कुछ हो जावा उस दे च मनुख जितनी मेहनत करता है, यतन करता है, उदा सवा भाग भी मनुख इस दे च नहीं लांदा कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। और वाकई जिस दिन ये ना कुछ हो जाता है सब कुछ हो जाता है, बीज ना कुछ होके एक दिन फल बन जाता है, दरख्त बन जाता है, पर पहले ही तो मिटता है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो मैं अर्ज करा, एक बाहर दी यात्रा है, एक अंदर दी यात्रा है, एक अहंकार दी यात्रा है, एक निरंकार दी यात्रा है। इनू मैं पूर्ण तौर ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे चों खोलना सी, पर समा अपने ढंग नाल जो है चला गया। दो मिनट मैं आप जी दे होर लवां। अंदर दी यात्रा नूं ही ध्यान साधना कहिंदे ने, ध्यान दा अंदर जाना, ध्यान दा बाहर जाना, बाहर दी यात्रा है। बाहर मनुख उदों दुखी हो जांदा जद उस तों कोई अगे है, उस तों कोई अगे है, किसी चीज दे च वी अगे होवे, प्रभुता च अगे, धन दे च अगे, शक्ति दे च अगे, कला दे च अगे, गुणा दे च अगे, रूप रंग दे च अगे, किसी चीज दे च ही अगे, दुखी हो जाएगा। तो सारी दुनिया च मनुखां नूं बहुता दुख इस गल दा हुंदा है, ये अगे क्यों है, अपने ही दुख मनुख दे बथेरे आंदे ने, पर एक दुख होर सहेड़ लैंदा है, ये अगे क्यों है, इसनूं पराई तात कहिंदे ने, महाराज ने जिक्र कीता है। जिस दे अंदर तात पराई होवे तिस दा कदे ना होवे भला, पराई तात लई फिरदा, ये अगे क्यों है। अंदर दी यात्रा जद कोई अगे आंदा है तो खुश हो जांदा है, उहदे कदमां विच बैठ के प्रसन्न आंदा है। हर के संत बताओ मार्ग, हों पीछे लाग चली, पीछे चलन दी खुशी होंदी उसकी, उत्थे ना कुछ होने दी चुनो खुशी मिलती है। जद कोई अगे जा रहा होंदा है उदी उमंग वध जांदी है, तरंग वध जांदी है, सिर्फ मैं ही प्रभु दे मार्ग ते नहीं चलिया, कोई होर भी चलिया और बहुत अगे लंघ गया, बहुत अगे लंघ गया, उन्हों खुशी मिलती है। बाहर दी यात्रा जो अगे लंघ गया है जैलसी आंदी है, ईर्षा आंदी है, तात आउंदी है, पर अंदर दी यात्रा जब कोई अगे लंघ जाए खुशी आउंदी है। और अंदर दी यात्रा जिस दिन मनुख ना कुछ हो जांदा है।

0: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण @604-581-1900।

प्रतापुरुष निर्भो निर्वैरकालमूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद मुख श्री शास्त्र खटु पिंज गिरन छुड़ जाए अंधलखे बधुरो सुने जो काल कृपा कराए। सम्मान योग गुरु रूप साथ संगतियो फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अकाल पुरख दे दो रूप मने ने निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण रूप रिच ओ सूक्ष्म है अदृश्य है सरगुण रूप रिच ओ दृश्यमान है। मकान दिखाई देंदा है बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। दरखत दिखाई देंदा है जड़ा नहीं दिखाई देंदी। शरीर दिखाई देंदा है आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है निरंकार नहीं दिखाई देंदा। इसनों

ईश्वर का एक रस है और ऐसा रस जिन्हों अकथ कह देता है। कभी कभी ये इस तरह की श्रद्धा मां बाप नाल भी हो सकती है। श्रवण कुमार ने की थी, उन्हों प्यो दे ची परमात्मा दिखाई देता से मां दे ची। ये श्रद्धा कदी कदाई अपने तो बड़े भरा दे ची भी हो सकती है। लक्ष्मण दे अंदर सी राम दे प्रति ये भी मैच करते हैं। किधरे किधरे अपने उस्ताद दे प्रति भी हो सकती है। अमीर मिनाई जौक कोल पढ़िया सी सिखिया सी। किधरे बहादुर शाह जफर ने एक समस्या दे दी, उस दे उत्ते नजम लिखण वास्ते कह दिता और चार दिन बाद मंग कर लियो मेरे को लेना नजम। जमुना दे नौका च बैठे अमीर मिनाई ते जौक। हालांकि अमीर मिनाई जौक दा शागिर्द से पहले जौक ने अपनी नजम सुनाई। उस्ताद से आखिया हुण तू सुना। जैसे अमीर मिनाई ने सुनाई किन अश्कबार हो गए जौक और चेहरे ते थोड़ा दुख भी प्रकट होया। अमीर मिनाई कहन क्यों शहनशाह ने यह नजम जब तेरी सुननी है इस तो बाद साड़ी नजम फिर की मैंने रख दी कुछ भी नहीं। उसे वक्त कागज के टुकड़े किते थे जमुना छोड़ दी। मेरे बोल मेरे उस्ताद दे बोलों नू छोटा कर देन ऐसे बोलों की लोड़ ही नहीं। मेरी नजम मेरे उस्ताद दी नजम नू छोटा कर देवे मैनू ऐसी नजम की लोड़ भी नहीं। तुसी मेरे उस्ताद हो। कदी कदी इस तरह की श्रद्धा अपने उस्ताद नाल भी हो सकती है, मां बाप नाल भी हो सकती है, गुरु नाल हो सकती है। गुरु अवतार संत पुरशां नाल संबंध श्रद्धा नाल जुड़ता है। प्यार का सब तो उच्चा रूप है भगती, ये भगवान दी होंदी और भक्ति भगत नूं ही भगवान बना देती है। जैसा भगवान है ऐसा ही भगत है। गुरबाणी कहती है पंडित सूर छतरपत राजा भगत बराबर और ना कोई। जिथे भगत है उत्थे वड्डे तो वड्डा पंडित सूर वीर महादानी ज्ञानी नहीं पहुंच सकता। और फिर भगत ते नारायण दे भगत ते भगवान दे कोई भेद रह नहीं जाता। ऐसा गुरबाणी बार बार कहती है नामे नारायण नहीं भेद राम कबीरे भेद न भाई। हुण कोई भेद नहीं रहा। भक्ति भगत नूं भगवान बना देती है। दोई मिट जाती है। बूंद हुण अलग नहीं रह गई सागर हो गई है और खो गई। जिस दिन जमुना सागर विच खो जाती है गंगा खो जाती है फिर सागर विच गंगा लभनी औखी है। सागर विच फिर सागर ही है। कबीर राम विच खो के राम ही हो गए। नामदेव प्रभु विच खो के प्रभु ही हो गए। ऐसा भक्ति कर देती है। भक्ति विच श्रद्धा की लेस ते होंदी है प्रेम की मात्रा ते होंदी है लेकिन फिर भी भक्ति शिखर ते। हुण मैं अर्ज करा स्नेह दे च सारे आउंदे ने। हजारां च कोई एक कद मनुख प्रेम तक पहुंचदा लखां दे च किधर एक कद दे शरदा आउंदी है। चक्कर च ना पैणा शरदा। गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने लोकी गप्पां मारी जांदे हुंदे ने बड़ियां वाहियात गल्लां भी करी जांदे हुंदे ने। हैरानगी आउंदी है की शरदा है। एक दूजे दियां पग्गां लैंदियां भी मैं देखियां ना कुछ भी नहीं।